0: साध कै संग
1: जय मार्ग के गने जाहे न कोसा
0: हर का नाम ऊहा संग तोसा
1: पैंडे महांध गवारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: जहां पंथ तेरा को ना सुईनु
0: हर का नाम तह नाल पछानु
1: महा भयान तपद बहु काम
0: तह हर के नाम की तुम उपर शाम
1: जहां तेरे का मन तुझ आकर खै
0: तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भगत जिना

0: रते रंग एका
1: नानक जन के बिरद भवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
1: हर के नाम जन को तृप्त भुगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जपत का परिणाम।

0: जन के माल खजीना
1: हर धन जन को आप प्रभु दीना
0: हर हर जन कह ओट सतानी
1: हर प्रताप जन और न जानी
0: बोत बोत जन हर रस राते
1: सुन समाद नाम रस माते
0: हर पहर जन हर हर जपै
1: हर का भगत प्रकट नहीं छपै
0: भगत मुक्त बहु करे।

0: सुर भंग।
1: अपन गुल पर्वत पर पवन
0: नहीं हो तुहा उस गवन।
1: अवतार करुणा मैं दीन बेनती कर।
0: नानक तुमरी कृपा करै।
1: संग सहाय सो आवे न चीत।
0: जो बैराई दास प्रीत।
1: गुरुआ के गृह पीतर बसै।
0: आनंद के

0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप लै लाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राजोवन धन माल
1: मिथ्या काम क्रोध बिकराल
0: मिथ्या रथ वासी अस वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया बेगस्ता
0: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर करत गमान
0: अस्त्र भगत साध की सरन
1: नानक जप जप जीवै हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है
1: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरै
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तरिया

0: यह प्रसाद छत्य ही अमृत खाहे।
1: ठाकुर को रख मन माहे।
0: यह प्रसाद सगंधत तन लावे है।
1: जिसको सिमरत परम गत पावे है।
0: यह प्रसाद बसे सुख मंदर।
1: जिसे ध्याए सदा मन अंदर।
0: यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
0: यह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा ध्याए ध्यावन जोग।
0: यह प्रसाद पाठ पटंबर हटावे
1: है। जिसे त्याग कंदवर लुभावे है।
0: यह प्रसाद सुख सहज सोई जाए।
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जाए।
0: यह प्रसाद तू सब को मानना है।
1: मुख ताको जस रसन बखाना है।
0: यह प्रसाद तेरो रहता धर्म।
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म।
0: सब जी जब दर्क है मान पावे।
1: नानक पासे ती कर जावे है।
0: यह प्रसाद आरोग कंचन देही।
1: निव लाभ तिस राम सनेही।
0: यह प्रसाद रहोला रहत।
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: यह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाका।
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके।
0: यह प्रसाद तुझको न पहुँचे।
1: मन सास सास सिमरो प्रभु के।
0: यह प्रसाद पाए दुर्लभ दे।
1: नानक ताकि भक्त करे।
0: यह प्रसाद भूखन पहरी जय।
1: मन ते सिमरत क्यों आलस की जय।
0: प्रसाद आस वास असवारी।

0: सदा साध जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइया
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश।

0: ज्ञानी का कथया ना जाय अदाखर।
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष के दाता।
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी।
1: नानक।

0: भगत पावे।
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग।
1: ते बिन से सगला भरम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म।
1: सत संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे।
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे बिसन प्रीत।
1: के जन हृदय बसावे
0: नानक जप भगवती भगवंत को पावे।
1: पंडित जो मन पर बोध
0: राम नाम आत्म में सुध।
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे।
1: की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे।
1: वेद पुराण सिमरत बुझे मूल
0: दुख में जाने अस्तूल।
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश।
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम।
1: जो जपे तिसकी गत होए।

0: भांत।
1: प्रभते हुए ब्रह्मा ही समात।
0: आगा अंत न जाने कोय।
1: आपे आप नानक प्रभ सोए।
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास।
1: तिन होवत आत्म प्रगास।
0: कई कोट तत् के बेते।

0: है बड़ राजा।
1: कबहु
0: कबहु
1: भिखारी
0: भिखारी नीच
1: नीच
0: के
1: के
0: साजा,
1: साजा,
0: कबहु आपकी कीर्ति में आवे,
1: कबहु
0: कबहु
1: भला
0: भला
1: भला
0: भला कहावे,
1: कहावे।
0: जो प्रभु राखे तब ही रहे,
1: गुर
0: गुर
1: प्रसाद
0: प्रसाद नानक
1: नानक
0: सच
1: सच
0: कहे।
1: कहे।
0: कबहु होए पंडित करे बखियान,
1: कबहु
0: कबहु
1: मोहन
0: मोहनधारी
1: धारी
0: लावे
1: लावे
0: ध्यान,
1: ध्यान।
0: कबहु तट तीर्थ स्नान,
1: कबहु
0: कबहु
1: सिद्ध
0: सिद्ध
1: साधक
0: साधक
1: मुख
0: मुख
1: ज्ञान,
0: ज्ञान। कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया,
1: अनक
0: अनक
1: जोन
0: जोन
1: पर
0: भरमै
1: मैं
0: भरमिया।
1: भरमिया,
0: नाना रूप जो सुभागी दिखावे,
1: जो
0: जो का
1: प्रभावे
0: भावे तिवै
1: तिवै
0: नचावे।
1: नचावे,
0: जो तुस भावे सोई होए,
1: नानक
0: नानक
1: दूजा
0: दूजा
1: अवर
0: अवर न
1: न
0: कोई।
1: कोई।
0: कबहु साधु संगते

0: संत के दुखन यार जकट है,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटै,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन शोभा ते हीना,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भीतरै,
0: संत के दुखन ते मुख पवै,
1: संतन के दुखन कागज न लवै,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिकट जोन किरमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जड़े,
1: संत के दुखन सब को चलै,
0: संत के दुखन तेज सब जाए,
1: संत के दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाहे।

0: की निंदा को सर्व रोग,
1: संत की निंदा को सदा बिजोग,
0: अंत की निंदा दुख में दोग,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोग,
0: संत का दुखी सदा पवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मिट,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत के दुखी महा अहंकारी।

0: संत का दुखी अध बीज ते टूटे
1: संत का दुखी किते काज ना पूछै
0: संत के दुखी को उद्यान परमाईए
1: संत का दुखी उजड़ पाईए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: ज्यों सांस बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे
1: आप

0: तर बढ़ाए।
1: दंत का दोखी भूखा नहीं राजा,
0: जो पाप की इंधन नहीं त्रापे।
1: दंत का दोखी छुटे अकेला,
0: जो बुआर तेल की माही दुहिला।
1: दंत का दोखी धर्म ते रहत,
0: संत का दोखी सदमितिया कहत।
1: कीर्तन निंदक का तो रही पे,
0: नानक ज्योति पावे सोई थिया।
1: संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए।
1: संत का दोखी सदा सहकाई है,
0: संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है।
1: संत के दोखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा।
1: संत का दोख न तृष्टे कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए।
1: पिया कीर्तना मेटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब काट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: उनकी उस्तत करो दिन रात,
0: तिसे त्याहु सांस गिरास।
1: सब कुछ बरते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया।
1: अपना खेलाव करने हार,
0: दूसर कौन कहे विचार।
1: कृपा करे तिसे अपन नाम।

0: बिन से सब रंग
1: करन चलो मार्ग गोबिंद
0: मिठे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा
0: हर दरगह नानक गुरजल मता
1: हर भागी तहे जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करह विचार।

0: जना सुने सो बचन
1: सर्वव्यापी राम संग रचना
0: जन जाता तस की ये रह
1: सत भजन साधु सब कहत
0: जो होए सोई सुख माने
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पियो ही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: जिस प्राप्त ते सगली उत्पात
0: जिस भावे ता करे विस्तार
1: जिस भावे ता एक अंकार
0: अनक कला लखी न जाए
1: जिस भावे तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतर गत जिसे आप जनाए
1: नानक ते जने आप बुझाए।

सगल द्वार का शाड कह गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सा विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहूं हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनका मन बसिया वाजे शब्द कन्हेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु भेट हो जिस दियां एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो हो शब्द तरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द कर सपहगे कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत उदवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर भर पूरे बिरवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच दिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त जी न जाई नित नित्रा कुर थारो तुम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जो कीतो होई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेरा मत होई।

सुनी अरदास स्वामी मेरा है, सर्ब कला बनयाई प्रगट पही सगले जुग अंतर।

बदले चित जोड़ के इतनी प्रसन्नता। पर की किया, अब भी तन जन्म भव पयो, जन्म मरण दुख सब मिट गयो, कि अजे भी तेरा जन्म ताने, तेरा जन्म मरण सारा ए भी मिट जाएगा। करो मनोरथ जो अब जैसे, सो लीजो नै बिलमो कैसे। जेड़ा मनोरथ बनाया हुण ए मनोरथ तेरा भी पूरा होएगा। कह कर सो घोड़ा मंगवायो, सुंदर जिस पर जीन सुहायो। आखो सतनाम।

सकदा। पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लिया। आख्या बाबा ये स्वास्थ्य किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग

देश कौम दी रखिया वास्ते मजलूमां दी रखिया वास्ते पैदा कीता। एहो ही मकसद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनाया अते अपना आप गुरु दे आशय अनुसार गुरु की सेवा करदिया होया।

देह नाम कर अपने चेरे सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सतनाम।

ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसहि मेरे ही रह, संग पुनीता देही। जन की धूर देहो कृपा, निध नानक कै सुख एही। जन के चरण

फला प्रभु के सिमरन सफल फला से सिमरहे जिन आप सिमराए। नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा प्रभु के सिमरन उधरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सब कुछ सुझे। प्रभु के सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम माहि समाये। प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जनका दर्शन दसना प्रभु को सिमरे से तन बनते प्रभु को सिमरे से बद बनते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमता जी प्रभु को सिमरे से सर्व के राजी प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु के सिमरे सदा अवनासी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरे से प्रभु उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल जीता प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग। नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे प्रभु के सिमरन कभु न चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहर समानी प्रभु के सिमरन निःचल आसन प्रभु के सिमरन कवन बगासन प्रभु के सिमरन अनहद जन कार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिनको प्रमया। नानक दिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जदि जाता ते हर सिमरन नीचहु कुंड जाते हर सिमरन धारी सवताना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन मह आप निरंकारा कर कृपा जी सा बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक पे प्रभसात अष्टपदी। जय मात पिता सतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुस्कुल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहि उधारी अनक पुनः चन करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जब तोहे सुखिया लाख रोधी बंधन परै हर का नाम जब निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जब तागावै जिह मार्ग एह जद अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लगबाही नाम जब तह पार पराई अनक बिघन जय आय सिंगारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबहु न धोवे हर का नाम काव कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साथ गै संग जेह मर के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जे पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जा पन तेरा को न संजानू हर का नाम जह नाल बखान पछानू। जह महा भयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम उपद छाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर अर औखद साध कुमात हर जन कै हर नाम निदान पावम जन की दान मंत्र रंग रति रंग एक है नानक जन कै बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपर न भंग हर का नाम जन की वड्याई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे ब्योग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन को आप रब दीना हर हर जन के ओठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत

0: भगत नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेति तरे, पार जात एह हर को नाम, काम तीन हर हर गुणगाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत दुर्दवसै, संत प्रताप दुर्द सब नसै, संत का संग बड़ भागी पाइए, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तोल कछ अवल न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को इस रोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेके सब टडोल, पूछ नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सकल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पन पुण दान होमे बहु रत्ना, शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम बीचार, नानक गुरमुख नाम जपिए, एक बार नौ खंड प्रतमी फिरे चिर जीवे, महा उदास पीसर थीवे, अगन माही होम प्राण, कनक असवे हैवर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन माज मार्ग संजम अत साधन, निमक निमक कर श्री कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम समसद कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत कत पा गत पाहे, मन कामना तीर्थ छुटै, गर गुमाना मन ते हुटै, सोच करै दिन सर रात, मन की मैल ना तंती जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिख्या टरै, जल धोवै बहुत देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहुमूच, बहुत स्याण जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, पेख अनेक अग्न बुझै, कोड़ पाव दुर्गहनी सिजै, दुर्गहनी सिजै, छूट नाही ऊपयाल, मोह व्यापै माया जाल, अवर करतूर सगले जम डानै, गोविंद भजन बिल तन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जब दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सत गावै, जे को अपनी सुभा लोरै, सा संग ए हों मैं छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की शरणी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटे अपमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिर साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप नहीं लेपा, निर्धन को तन तेरो नावन, थावे को नाव तेरा थाओ, निमाने कर को प्रभ तेरो मान, सकल कटा को देव दान, कर्ण करावन हार स्वामी, सकल कटा के अंतर्जामी, अपनी गत विद जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्त तुम ते होए, नानक अवर ना जान सकोए, सर्व धर्म है शेष धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सकल क्रिया में उत्तम क्रिया, सार संग दुर्मत मन हिरिया, सगल उद्यम है उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम तान, नानक जी घट वसै हर नाम, सलोक निर्गुण यार एया नया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन की या तिस जीत रख, नानक निभी नाल अष्टपदी, रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूलते कवन दिस्तानी, जिन तू सार सिवार सिंगार सवार सिंगारिया, गर्भ गर्भ अगन महज ने उबारिया, बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद, बिरध पया ऊपर साग सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन, एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेहु तौ नानक सीजै, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत मनता संग हसै, जे प्रसाद पी वह शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जे प्रसाद भोगे सबरसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसह त्याग अवन संरचना, जैसे दुख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काल लिहो प्रभ आपे, आद अंत जो रखनहार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नवनिध पावै, ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सदा हजूरे, ता को अंधा जान दूरे, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦੁਰਗਹਿਮਾਨ ਤਿਸੈ ਵਿਚਾਰੈ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕੌੜੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੜਨਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਰ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਗਰਧ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕਾਲ ਲੇਹ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਸ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ ਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਪਤ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਯਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਮਨ ਅਣਦ ਕੈਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਰਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹੋ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਵਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕਾਰ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੁ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸਪਰੀ ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਏਕ ਬਸਤ ਮਕਾਨ ਬਿਖੋਟ ਗੁਬਾਵੈ ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀੜਤ ਵਰਤੈ ਅਣਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਚ ਬਾਹੋ ਸਾਹੋ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਨਾਵੈ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ ਹੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਤਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੁਗਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵੈ ਬਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਕ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਅਸਤਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧਗੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀ ਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ਮਿਥਿਆ ਹਰਸ ਪਰ ਦੁਰਖ ਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕੋ ਤਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ ਬਿਨ ਮੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਬਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਰਤੀ ਸਾਗਤ ਕੀ ਆਰ ਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਸੁਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਖ ਆਵ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਰਾਤ ਦਾਨ ਤਨ ਤਨ ਤਨ ਤਨ ਤੇਜਨ ਜੇ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰਨਾਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ਜਨ ਨਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਹਰ ਪੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਣ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ आवत जावत जन्मै मरै, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चन प्राता, करो बेनती पावम सब जाने, अपना किया पहमाने, आप है आप, आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यानम सकल ते रहत, सबक जाने आत्म की रहत, निमुख सबक जाने आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाए, थान तरंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख नव जप नानक हरि सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोहो, बिनस जाए अमेव, नानक प्रभ शरनागती, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जय प्रसाद छतहि अमृत काहे, तिस ठाकुर सिउँ रख मन माहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जय प्रसाद सुगंध दत्तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे, जय प्रसाद बसै सुख मंदिर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर, जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरह तिस रसना, जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याग त्यावन जोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कथ अवलुभावे, जय प्रसाद सुख से सुही जय सोई, जय मन आठ पहर ताका जस का भी जय, जय प्रसाद तुझ सब को माने, मुख ताको जस रसन मुखाने, जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी दर जपत दुर्गह मान पावे, नानक पद सेती कर जावे, जय प्रसाद आदो कंचन देही, लिव लाव तिस राम स्नेही, जय प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावह, हर हर जैस कहत, जय प्रसाद तेरे सकल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभता कह, जय प्रसाद तुझको न पूछे, मन सार संसार सिमरो प्रभु ऊचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ता की भगत करे, जय प्रसाद आपूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय, जय प्रसाद अस हस्त अस्तवारी, मन तिस प्रभु को कबहू ना बिसारी, जय प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बनत मनाई, उड़त बैठ सत सहत आई, तिसह त्याए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बोदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास सितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद, जे प्रसाद पिख है प्रसमाद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण सफल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह समाव है, ऐसा प्राप्त त्याग अवर करत लागु हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तुम प्रकट संसार, तिस पाप को मोड़ना मन हो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तोता को जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू तासु राच, जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विकास, प्रभ सुभ सन बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, शरण दान प्रभ तेरी मया, आपो कछु ना किन्हु लया, जे जित लाभ हो तित लग है, हर नाद नानक किन कै कछु ना हाद श्लोक, अगम अगाध पा ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साधना की अचरज कथा अष्टपदी,
1: साध कह संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कह संग मिटै अभिमान, साध कह संग प्रगटै सो ज्ञान, साध कह संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध कह संग पाए नाम रतन, साध कह संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग गुचर मिलै, साध के संग सदा